माला तुम ने जे जिम दिखा मम्मी गादे मा खाया मा खाई दोले ने गिर गिर तारी ने दा खाया दा आसा ने दा मान जालम लंग बेले दुबई ले खमा मा खुला तारे ले ले मामा देवी पासा जी।